श्रोताओं, अमृता गोखले के स्वर में आप सुन रहे थे वसंत बापट की रचना। कार्यक्रम में अब सुना रहे हैं नामदेव महाराज की भक्ति रचना, जिसे गाया है दीपक पाटेकर ने।

संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे, जिसे गाया था दीपक पाटेकर ने। भक्ति संगीत के कार्यक्रम के अंत में अब सुनिए श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

अभी आपने श्रीकांत पारगावकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना सुनी। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र का निर्माण था। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है तीन ताल पर तबला वादन. कलाकार हैं पंडित सोहन लाल मिश्रा. आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सनातन गोस्वामी. तो लीजिए प्रस्तुत है तीन ताल पर तबला वादन. कलाकार हैं पंडित सोहन लाल मिश्रा.
2: This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. This morning we present Hindustani Instrumental Recitals. Listen first to a tabla recital in Teen Taal. Our artist is Pandit Sohan Lal Mishra. Accompanying him on the harmonium is Sanatan Goswami. Listen now to the tabla in Teen Taal. Our artist, Pandit Sohan Lal Mishra.

Thank you.

தகுதி கதகதி தாதன் கதகதி தாதன் கதகதி.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल पर तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित सोहनलाल मिश्रा। आपके साथ हारमोनियम पर थे सनातन गोस्वामी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग अहिर भैरव पर संतूर वादन। कलाकार हैं सुदीप कुमार घोष। आपके साथ तबले पर हैं सौम्योदीप मुखोपाध्याय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग अहिर भैरव पर संतूर वादन। कलाकार हैं सुदीप कुमार घोष।
1: You were listening to a tabla recital in Tintal. Our artist was Pandit Sohanlal Mishra. Accompanying our artist on the harmonium was Sanatan Goswami. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a santoor recital. Listen to the santoor in the rag Ahir.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहिर भैरव पर संतूर वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सुदीप कुमार घोष। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सौम्योदीप मुखोपाध्याय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a संतूर recital in the राग अहिर भैरव। Our artist was Sudeep Kumar Ghosh. Accompanying our artist on the tabla was Shomudeep Mukhopadhyay. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आपका स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कलाकार है पूर्णिमा धुमाड़े। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग मारुबिहाग, सुनते हैं विलंबित गत रूपक ताल में निबद्ध है, बोल है परी मोरी नाव, और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है, बोल है नैना लगाए मैंने। साथ संगत तबला माधव मोड़क, हारमोनियम सुयोग मंडलकर। तो आइए सुनते हैं राग मारुबिहाग, कलाकार पूर्णिमा धुमाड़े।

अभी आपने सुना पूर्णिमा धुमाले द्वारा प्रस्तुत राग मारू बिहा। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे माधो मोड़, हारमोनियम पर थे सुयोग कुंडकर। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं पूर्णिमा धुमाले द्वारा प्रस्तुत राग श्याम कल्याण। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है मोरी सुधलिनी और द्रुत तीनताल में निबद्ध रचना के बोल है रे बनरा प्यारा। साथ संगत तबला शंकर कुंभार, हारमोनियम चैतन्य कुंटे। तो आइए सुनते हैं पूर्णिमा धुमाले द्वारा प्रस्तुत राग श्याम कल्याण।

श्रोताओं, अभी आपने सुना पूर्णिमा धुमाले द्वारा प्रस्तुत राग श्याम कल्याण। आपके साथ तबले पर थे शंकर कुंभर, हारमोनियम पर थे चैतन्य कुंटे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। राग हर पल हर समय आपके साथ।

Boom. Dim. Tum. Tum. Tum. Tum. Tum. Dim. Dim.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है शरण रानी का सरोद पर बजाया राग दरबारी. विलंबित और द्रुतगत इन ताल में निबद्ध है.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now have for you a sarod recital by Sharan Rani. She first presents Rag Darbari, in which you will hear a composition set to Vilambit and Drut Teen Taal.

0: अभी आप शरण रानी का सरोद पर बजा राग दरबारी सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए चंद्रनंदन, विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग दरबारी कंटिन्यूइंग विद हर सरोद टाइटल। शरण रानी नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग चंद्रनंदन, इन विच यू विल हियर अ कंपोजिशन सेट टू विलंबित एंड द्रुत तीन ताल।

0: अभी आप शरण रानी का सरोद पर बजाया राग चंद्रनंदन सुन रही थी। कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू जस्ट हर्ड राग चंद्रनंदन एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सरोद रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय शरण रानी। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओ, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल पर. आज के हिंदुस्तानी संगीत के कार्यक्रम में हम आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं. आज के हिंदुस्तानी संगीत के कार्यक्रम में सुनते हैं शहनाई वादन और सुंदरी वादन. प्रारंभ में सुनते हैं शहनाई वादन. कलाकार है प्रमोद गायकवाड़. आपने शहनाई पर प्रस्तुत किया राग परमेश्वरी सुनते हैं.

अभी आप सुन रहे थे शहनाई पर राग परमेश्वरी, कलाकार थे प्रमोद गायकवाड़। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सुंदरी वादन, कलाकार है भीमांडा जाधव। आपने सुंदरी पर प्रस्तुत किया राग अहिर भैरव सुनते हैं। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तो आइए सुनते हैं सुंदरी पर राग अहिर भैरव, कलाकार भीमांडा जाधव।

अभी आपने सुना सुंदरी पर राग अहिर भैरव, कलाकार थे भीमण्णा जाधव। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी 24/7 DTH चैनल पर, भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तीन ताल में तबला वादन. आज के कलाकार हैं संदीप बंद्योपाध्याय. आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सोमनाथ बर्धन. तो आइए सुनते हैं तीन ताल में तबला वादन, कलाकार संदीप बंद्योपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी तबला रिसाइटल्स. लिसन टू अ तबला रिसाइटल इन तीन ताल. आवर आर्टिस्ट दिस इवनिंग इज संदीप बैनर्जी. Accompanying our artist on the harmonium is Somnath Bardhan. Listen now to a tabla recital in Teen Taal by Sandeep Banerjee.

ধাতি গেনে ধারা গেনে তাকে দিনে

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल में तबला वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे संदीप बंदोपाध्याय। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे सोमनाथ बर्धन। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय

0: संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रूपक ताल में तबला वादन। आज के कलाकार हैं संदीप बंदोपाध्याय। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सोमनाथ बर्धन। तो आइए सुनते हैं रूपक ताल में तबला वादन, कलाकार संदीप बंदोपाध्याय।
1: You were listening to a Hindustani tabla recital in Teen Taal. Our artist this evening was Sandeep Banerjee. Accompanying him on the harmonium was Shomnath Bardhan. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the program, we now present a tabla recital in Rupak Taal. Our artist is Sandeep Banerjee. Accompanying him on the harmonium is Somnath Bardhan.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप रूपक ताल में तबला वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे संदीप बंद्योपाध्याय। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सोमनाथ बर्धन। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a tabla recital in Rupak Tal. Our artist this evening was Sandeep Banerjee. Accompanying the artist on the harmonium

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कलाकार है सानिया पाटणकर। आपने प्रस्तुत किया राग ललत गौरी सुनते हैं। विलंबित तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है प्रीतम सैया दरस दिखा जा, और द्रुत तीन ताल में सुनते हैं सरगम। सात संगत तबला श्रीकांत भावे और हारमोनियम शुभांगी भवसार। तो आइए सुनते हैं राग ललत गौरी, कलाकार सानिया पाटणकर।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सानिया पाटणकर द्वारा प्रस्तुत राग ललत गौरी। आपके साथ तबले पर थे श्रीकांत भावे, हारमोनियम पर थी शुभांगी भवसार। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं सानिया पाटणकर द्वारा प्रस्तुत राग बैरागी तोड़ी। विलंबित छपताल में निबद्ध रचना के बोल है धरले ध्यान गुरुजन का, और द्रुत एकताल में निबद्ध रचना के बोल है लग्न लागी तुम सो और सरगम। साथ संगत तबला सचिन राजोपाध्य और हारमोनियम उपेंद्र सहस्रबुद्धे। तो आइए सुनते हैं राग बैरागी तोड़ी, कलाकार सानिया पाटणकर।

श्रोताओ, अभी आपने सुना है राग बैरागी तोड़ी। कलाकार थी सानिया पाटणकर। आपके साथ तबले पर थे सचिन राजोपाध्याय, हारमोनियम पर उपेंद्र सहस्रबुद्धे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज प्रस्तुत है वायलिन पर राग देवगिरी बिलावल. कलाकार है सुजीत देवघरिया. विलंबित ख्याल एक ताल तथा द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अरूप चैटर्जी.

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे सुजीत देवघरिया का बजाया वॉयलिन पर राग देवगिरी बिलावल। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया वॉयलिन पर राग श्याम कल्याण। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, मध्य लय बंदिश एक ताल में निबद्ध है तथा द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं अरूप चैटर्जी।

अभी आप सुन रहे थे सुजीत देवघरिया का बजाया वायलिन पर राग श्याम कल्याण। हम अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे रतन सिन्हा द्वारा बजाया सरोद पर राग भटियार से। द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्र।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे रतन सिन्हा का बजाया सरोद पर राग भटियार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रमोद कुमार मिश्र। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. लीजिए अब सुनिए निशेंद्र किंजल का सितार पर बजाया राग यमन में आलाप. विलंबित और द्रुतगत दोनों ही तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चटर्जी ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ सितार रिसाइटल बाय श्री निशेंद्र किंजल. He is accompanied on the tabla by Shri Prasoon Chatterjee. Shri Nishindra Kinjalk first presents Rag Yaman, in which you will hear the Alap, followed by Vilambit and Drutgat. Both are set to Teen Tal.

0: अभी आप निशेंद्र किंजल का सितार पर बजाया राग यमन सुन रहे थे। तबले पर संगति की थी प्रसून चटर्जी ने। और लीजिए अब सुनिए राग जय जयवंती, विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चटर्जी ने।
1: दैट वॉज राग यमन, श्री निशेंद्र किंजल। नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग जय जयवंती, इन विच यू विल हियर द विलंबित एंड द्रुतगत सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप निशिंद्र किंजल का सितार पर बजाया राग जय जयवंती सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए ये धुन।
1: यू जस्ट हर्ड राग जय जयवंती। श्री निशिंद्र किंजल कंक्लूड्स हिज सितार रिसाइटल विद अ धुन।

0: अभी आप सितार पर ये धुन सुन रहे थे। तबले पर संगति की थी प्रसून चटर्जी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद दैट धुन वी कम टू द एंड ऑफ द सितार रिसाइटल बाय निशिंद्र किंजल। ही वाज अकंपनीड तबला बाय श्री प्रसून चटर्जी। दिस प्रोग्राम वाज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है भारतीय संगीत का रागम DTH चैनल. हर दिन हर पल भारतीय संगीत. संत तुलसीदास की ये रचना प्रस्तुत है. स्वर है मलय बनर्जी का, बोल है विनती सुनो मेरी.

आप सुन रहे हैं रागम डीटीएच चैनल, हर पल हर दिन भारतीय संगीत। लीजिए अब सुनिए उषा मंगेशकर के स्वर में संत रैदास की रचना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।

संजीवनी भैलांडे के स्वर में आइए अब सुना जाए संत मीराबाई की ये रचना, तुम मोरी राखो लाज हरी।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल है। सविता बनर्जी की आवाज में आइए सुनते हैं गुरु नानक की रचना, बोल है एक सहारा है तुम्हारा।

आप सुन रहे हैं रागम डीएच चैनल, हर पल हर दिन भारतीय संगीत। लीजिए सुनिए शंभू लहरी और चंचल लहरी के युगल स्वरों में कृष्णदास की ये रचना, बोल जब ते श्याम।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये राग डीटीएच चैनल। संत तुलसीदास की ये रचना प्रस्तुत है मन्ना डे के स्वर में। बोल तहिते आयो शरण सवेरे।